मार्ग सुहावा। ओ चरण पूजनीक ने जिड़े गुरु घर वलों तुरदे ने, ओ चरण अजने गुरु महाराज जी पवित्र उपदेश विच कहंदे ने, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर दिन। दुर्दा ते जीव बहुत है, कई बार सेहत दी तंदुरुस्ती वास्ते भी तुरदा है, पर जरूरी नहीं कि तंदुरुस्ती मिल जाएगी। पर जदो सच्चे मार्ग ते तुरदा है ना, जदो कोई गुरु घर वल नू तुरदा है, अज में संगतां किन्ने प्यार से वजद विच श्री हेमकुंड साहिब वालों तुरियां जा रही हैं। सत्संगियो ये तुरिया होया एक एक कदम सुखा वालों बढ़ रहा है। तुरदियां तुरदियां संगतां 15,000 फुट ऊपर श्री हेमकुंड साहिब, जिथे कलगी सर महाराज जी ने बह के घोर तपस्या की थी, जद उथे पहुंच दिया ने ना, दात्रियां नू समा मिलिया है कई बार संगतां लजाण दा, अखी तकिया है संगतां उस स्थान वल वेख के इन्हें बैराग विच आ जांदियां ने, जिन्हें चिरां दा बिछड़िया बच्चा अपने माता पिता नू मिलदा है। चरणे गोविंद मार्ग सुहावा, आई गुरु नाल प्यार करन वाला सतगुरां दे पवित्र स्थान श्री हेमकुंड साहिब जी दे दर्शन करके वापस आया है। ये कैंसर दा मरीज है, अपने दुख ते फरियाद लेके गया है, क्योंकि जदों असीं दुखां विच फसदे हाँ ना, उदों सानू रब चेते आ जाता है। सुखां विच ते असीं रब भुला ही देंदे। बाणी विच इत्थों तक कहा है, दुख कई बार जीव नू रब दे इन्ने नेड़े लै जांदा है कि प्यार दी पक्की गंढ वज जांदी है। दुख दारू, दुख कई बार दवाई बन जाता है। गया ते दुखां दी खातर अरदास करन, पर उत्थों एहो जी रहमत मिली वो प्यार भुलाया नहीं जाता, गुरु नाल न्यू पै गया। डॉक्टर दे कोल जांदा है, जांच कराता है, डॉक्टर कहंदा है भी तू ते कैंसर दा मरीज है, तेनू दस्या है, तेनू कहा सी शरीर नू बहुती खेचल ना दे, पर तू शरीर नू बहुत खेचल दिती है, बहुता टुरन करके बेआरामी करके तेरा रोग बढ़ गया है, तू हुण बच नहीं सकता। जदों डॉक्टर ने इन्नी गल आखी, उदास हो के ये प्रेमी अपने घर नू मुड़िया आंदा है। ऐ मेरे कलगियां वालिया, तेरे राह ते तुरियां मौत भी आ जावे ये भी चंगी है, बहाना ते चंगा है, नहीं ते लोगां ने कहना सी वे कैंसर दी बीमारी नाल मर गया, बहाना चंगा है। जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई, प्यार वाले कदों लांबा देंदे। घर आया बिस्तर ते लेटिया है, नींदर नहीं पैंदी, सोचदा है महाराज डॉक्टर मैनू कहंदा है कि तू बच नहीं सकदा, कोई गल नहीं, सब ने मरना है, कोई फिक्र नहीं, पर है कलगियां वालिया, मैं ते तेरे दर से दिव्य रोगता वास्ते अरदास कीती थी,

जरूर मेरी भावना विच कोई फर्क रह गया होना। बाबा जी वचन करते सन बहुत कीमती वचन बाबा आनंद सिंह जी, साडी भावना विच फर्क हो सकता है, गुरु दियां रहमतां विच कोई फर्क नहीं होंदा। सानू कदे भी गुरु दी रहमत से शक नहीं करनी चाहिए। ऐ महाराज मेरी भावना विच कोई फर्क रह गया होना ये गलगियां वाले है। सोचा सोचदा अख लग जांदी है, जदों अख लगी ते चित की कहंदा है, की आवाजां पैंदियां ने। मना तू श्री हेमकुंड साहब गया सी, उथों तेनू सतगुरां दे दरबार विचों सरो पाओ मिलिया सी, वो तू किथे रखिया है, लिया के पेटी विच रख दिता है। कोई फलिया स्वरूपों से बख्शिश होंगी है, बख्शा पेटी विच नहीं रखी दिया, बख्शा ते माणिया जा दिया है। बख्शा कोई रखण वाले वास्ते होंदिया ने, बख्शा ते मानण वास्ते होंदिया ने। रात दे 12 बजे ने आँख खुल जाती है, घरवाली नू कहंदा है मैं श्री हेमकुंड साहब तो एक सरोपा ले आया सी, कहंदी ये पेटी विच पिया है, तुसां आपे रखिया है, सवेर होएगी ते कट देंगी। नहीं बई तू हुणे मैनू सरोपा दे कट के। बार बार कहण से घर वाली पेटी विचों सरो पाव कढ़दी है, दोनों हाथों से रख के जदों नजर मारदा है तो चेता आ जाता है, ओ दूर पहाड़ियां विच मेरे कलगियां वाले का पवित्र तप स्थान, उतों मैनू बख्शिश मिली, चेता आ जाता है। ते घर वाली यदि हालत

0: करे पछा तेरी अस्तुजू करे हो रक्षा
1: राख ले हो मोहे रखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे
0: बंद दुष्टन के हंता।

0: को कैसे सदा शिव निरंकार का चीत नहीं देव।
1: आप अपनी बुद्ध है देती बनत पिन पिन तो देती।
0: उमरा लखा न जाए पसारा कह सजा प्रथम संसारा।
1: एक रूप अनूप स्वरूपा रंग सुपयो राब की भूपा।
0: अंदज देरज से

नारद सारद करहिं खवासी। पास बैठी बीबी कमला दासी, कंठे माला जिहवा राम। सहंस नाम लै लै करूं सलाम, कहत कबीर राम गुण गावो। हिंदू तुरक दो समझावो, आस्था श्री कबीर जियो के। पंच पदे नौ दो तुके पंज, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाती तोरै मालनी पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरै सो पाहन निर जियो। भूली मालनी है एयो, सतगुर जागता है देव राव। ब्रह्म पाती बिष्ण डारी फूल शंकर देयो, तीन देव प्रतख तोरै करहिं किसकी सेयो। पाखान गड कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है तौ गण नहारे खाओ। पात पहत अर लापसी कर कर आकासार, भोगण हारे भोगया इस मूर्त के मुख चार। मालिन भूली जग भुलाना, हम भुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा करु हर राय। आसा बारह वर्ष बास बालपन बीते, बीस वर्ष काश तपना कियो। तीस वर्ष काश देव न पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख पुजंग बलयो राव। सूके सरवर पाल बंधावै, लूणै खेत हार हथ वार करै। आयो चोर तुरंत लै गयो, मेरी राखत मुगद फिरै। चरण शीश कर कंपन लागे, नैनी नीर सार बहे। जेह बा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरी धर्म की आस करै। हर जियो कृपा करै लिबलावै, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलदिया नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रहे संतो, अन्न धन कछुऐ लै ना गयो। आई तलब गोपाल राय की, माया मंदर छोड़ चलियो। आसा काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलंग निवारा। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। आहिर खवाद ना की जैरी मन, सोकृत कर कर ली जैरी मन रहाऊ। कुम्हारै एक जो माटी गूंदी, बोबिद बानी लाई। काहू मह मोती मुकताहल, काहू ब्याद लगाई। तुम है तन राखन को दिया, मुग्ध कह तन मेरा। जम का डंड मूंड मह लाग गए, खिन मह करे नवेरा। हर जन उत्तम भगत सदावे, आज्ञा भग आज्ञा मन सुख पाई। जो तस पावे सतकर माने, भाणा मन वसाई। कहे कबीर सुनो रे संतो, मेरी मेरी झूठी। चिर गठवार चटारा लै गयो, तरी तागरी झूठी। आसा हम मसकीन खुदाई बंदे, तुम राज सुमन पावे। अल्लाह अवल दीन को साहिब, जोर नहीं फुरमावे। काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाउ। रोजा तरै नवाज गुजारे, कलमा पिस्त न होई। सत्तर काबा कट ही पीतर, जे कर जन कोई। निवाज सोई जो न्याऊ बिचारे, कलमा अकल है जाने। पांचो मौसम सुला बिछावे, ताबो ताओ दीन पछाने। खासम पछाण तरस कर जी महे, मार मणि कर फिकी। आप जनाए अबर कहो जाने, तब हुए पिस्त सरी की। माटी एक पेख कर धर नाना, ताम है ब्रह्म पछाना। कह कबीर पिस जो छोड़ कर, दोज किसो मन माना। आसा गगन नगर एक बूंद न बरख, नाद कहाँ जो समाना। पार ब्रह्म परमेश्वर माधव, परम हंस ले सधाना। बाबा बोलते ते कहाँ गए, देही के संग रहते। सुरत माहे जो निरते करते,
कथा वार्ता कहते रहाऊ। बजावन हारो कहाँ गयो जिन एहि मंदर की ना, साखी शब्द सुरत नहीं उपजाए खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल भई संग तेरे इंद्री का बल थाका, चरण रहे कर टरक परे हैं मुखो न निक सह बाता। थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते, थाका मन कुंचर उर थाका तेज सूत धर रमते। मृतक भय दस बंद छूटे मित्र।

थड़पनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महान देव चलिया मार मार थड़पनी निरप निर्मल जल पैठी जिन त्रिपवन डसी अले गुर प्रसाद डेठी राव सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूस नहीं अवरा सरपनी जीती कहाँ करे जमरा ए सरपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या तिसते होई ए बस्ती तां बस सरी कसरीरा गुर प्रसाद सहज तरे कबीरा आसा कहाँ सुवान कौ सिमरत सुनाए कहाँ सागत पह हर गुण गाए राम राम राम रमे रम रही है साकत स्यों भूल नहीं कही राव कौआ कहाँ कपूर चराए कह बिशियर कौ दूध पियाई सतसंगत मिल विवेक बुद्ध होई पारस पारस लोहा कंचन सोई साकत सुवान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया अमृत लै लै नीम संचाई कहत कबीर ओवा को सहज न जाई रा आता लंका सा कोट समुंद सीताई तेह रावण अहंकार खबर न पाई क्या मांगो किस थिर न रहाई देखत नैन चल्यो जग जाई राव एक लख पूत सवा लख नाती तेह रावण कर दिया न बाती चंद सूरज जाके तप दरसोई बैसंतर जाके कपरे थोई गुरमत राम नाम बसाई आस थिर रह न कत हूं जाई कहत कबीर सुनो रे लोई राम नाम बिन मुक्त न होई आसा पहला पूत पछैरी माई गुर लागो चेले की पाई एक अचंभो सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई राव जल की मछली तरबर ब्याई देखत कुतरा ले गई बिलाई तला रे बैसा ऊपर सूला तिसका पेड़ लगे फल फूला घूर चार भैंस चरावन जाई बाहर बैल गोन कर आई।

की लागै भूख उत भूखै खाए चलियां दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचा नाए राव साचे नाम की दल बढ़ियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकर आखण पाहे वड्डा न होवै काट न जाए ना ओ मरै न होवै।

सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमया पारा, सब त्याव हैं सब त्याव हैं तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा।

सब गोई। जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सहका जन होई। आसा महला चौथा, तू करता सचार मैं डसाई।

हम देखा तहडू बियले मान एक न चेतस मूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाउ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक दिन की शरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की है तेरी बरिया अबर काज तेरा कित ना काम

सब बैरन को आज संगरियाए, पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सुतम ते पाऊ। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे भर आए, मरण काल का त्रास ने भर आए। हू जो सदा हमारे पछा, सरी अस्तुज जो कर हो रक्षा। राख ले हो मोह रख नहारे, साहेब संत सहाय प्यारे।

काल पाए कर बिजन बरकासा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन अपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार दसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहबद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत।

एक एक की पीर पछाना है, खट खट के पट पट की जाना है। जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह कर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब थारे आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरियालम। निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनि

पारणत पेन पेन तो है तेती तुमरा लखा न जाय पसारा किहे बिद सजा प्रथम संसारा। एकाय रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत पुज खान बहोर रज दीनी कहूं भूल राजा वै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चाम पव आज जुगाद स्वरूप सुयम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दुष्ट जिते उठ बतुत पाता सकल मलेश करो रण काता जे आस तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख दहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा हुए ताही सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जहिन हरि हो ताके ताप तनक मोह हरि हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शास्व।

से मैं तरे ब्रह्म ज्ञानी जिस जगाए पिया गए ही रास आकाश कथा तन जानी जा कहो आई सुई बिहाज हो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होएंगो फेरा अंतर जामी पुरख विदाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोह कौ कर संतन की धूरे।

सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। अखीर गुरु जी अकाल पुरख दा भाणा मिठा करके मानदे होए 30 मई 1606 नू रावी दियां लहरां विच आलोप हो गए।

0: ਕੇਰਬੋ ਦੀ ਰੰਗੀਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ FM ਰੇਡੀਓ CISK 94.3 ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਨ ਸਿੰਘ ਸਵਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
1: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
2: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call
3: 250-392-3874. अजोनीस्तैभं गुरुप्रसाद। सन्मानीय गुरु रूप सत्संग जीओ, 10-15 मिनट कुछ विचार गुरबाणी आप जी के सामने रखा, पेश कर फतेह प्रवान करने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो एकाग्रता प्रदान करने महर्ष कर रहे कि धर्म एक मन की अवस्था का नाम है, पर अधर्म भी एक मन की अवस्था का नाम है। इस तरह जिवें तंदुरुस्ती शरीर की एक अवस्था है, बीमारी शरीर की एक अवस्था है, बीमारी शरीर का एक अंग है, एक अवस्था है, तंदुरुस्ती भी उसकी एक अवस्था है। धर्म अधर्म मन की एक अवस्था है, अधर्म अंधकार, धर्म प्रकाश। पुराने ऋषि मुनि की प्रार्थना ही यही होंगी थी, हे प्रभु सानू अंधकार तो प्रकाश दिख ले जाओ, अज्ञान तो ज्ञान दिख ले जाओ। ये देश सदियों तो ज्ञान में ही भगवान आखदा रहा, चानने ही परमात्मा आखदा रहा, यानी कि कह लो परमात्मा दे अर्थ भी प्रकाश है, चानना। परम आत्मा, परम प्रकाश, परम चानना। धार्मिक मनुख की अवस्था की होगी, इसनू ते गुरु नानक देव जी महाराज इन्हें प्रमाण करते ने, ऐसा नाम निरंजन होए जेको मन जाने मन होए। जिस दी ए अवस्था बन गई है वो कह नहीं सकता, वो कहने च आंदा ही नहीं। अगर कहने च आ गया है तो वो अवस्था कहने तो उच्ची नहीं हो सकती। जिसनू मेरी ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੂਰਾ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਸਤੂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੂਜੀਏ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਸਤੂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। मेरी जबान जिसनू पूरा कथन कर सकती है वो मेरी जबान तो वड्डा नहीं, और जेड़ी मेरी अकल जिसनू समझ सकती और पूरा समझ सकती है वो मेरी अकल तो वड्डा नहीं। इस अजीब ही कृष्णा देखा है अल्लाह की राह में जिसे अल्लाह की खबर थी वो बेखबर मिला, जिसे अल्लाह की खबर थी वो बेखबर मिला। कहने ने जब परमात्मा प्रगट होता है तो इंद्रियां दी शक्ति के शरीरक शक्ति करके नहीं, जब कोई मनुष्य इस तो अगे लंघ जाता है। मनुख की एक सीमा है अकल, और अकल की एक सीमा है इंज कह लो अकल एक सीमा है। अकल तो कोई अगे लंघ जाए तो असीम देश पहुंच जाता है, और अकल तो कोई थल्ला चला जाए बिल्कुल थल्ले चला जाए तो अपनी सीमा भी गवा बैठता है, अपनी होंद भी गवा बैठता है। कहने दो ही मार्ग ने सुखी होने दे, या अकल तो थल्ले हो गए या अकल तो अगे लंघे। मैं सवेरे अर्ज की थी अकल दे तल पे दे दुख ही दुख, जितना कोई सोचेगा उतना परेशान हो जाएगा, जितना कोई अकलमंद होगा उतना ही दुखी होगा। इंज कह लो जो महान दुखी है महान अकलमंद है, जो महान अकलमंद है महान परेशान है। पशु परेशान नहीं होंगे, पक्षी परेशान नहीं होंगे, बच्चे इतने बेचैन नहीं होंगे। और मैं फिर अर्ज करा जो जितना अचेत है वो उतना ही सुखी है, जो जितना सुचेत है उतना ही दुखी है। जितना मनुख सावधान ते सुचेत होंदा है, सियाणा होंदा है, सूझवान होंदा है, दार्शनिक फिलोसफर होंदा है, जितना वो गहरा सोचदा है उतना ही गहरा उत्थे दुख है। जितना उच्चा जो कोई सोचदा है उत्थे दुख भी उतना ही उच्चा है। या इंज कह लो मनुख की जितनी अकल है उतना ही दुख है, उस तो ज्यादा दुख नहीं है इंज कह। और जब कोई अकल दे तल ते जीण वाला देखदा है सवाए दुख बेचैनी तो होर कुछ नहीं, तो रस्ते दो रह जाने, या अकल तो थल्ले जाए या अकल तो अगे चला जाए ऊपर उठे, और कोई रास्ता ही नहीं। अकल तो थल्ले चला जाए तो समा खो जाता है, अकल तो अगे चला जाए तां भी समा खो जाता है। बेहोश मनुख की दुनिया च वक्त नहीं है, और मैं अर्ज करा भगत की दुनिया च भी वक्त नहीं है। पत्थर की दुनिया दी समा नहीं है, अचेत मनुख की दुनिया दी काल नहीं है वक्त नहीं है, पर परमात्मा दी भी काल नहीं है वक्त नहीं है। वक्त काल इसनू गुरु नानक देव जी महाराज कहने एक बंधन है एक दुख है। जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी आई तेती। वैसे कि रात का समय मनुख की दिमागी शक्तियां सुकड़दियां ने, गुरबाणी बहुत गहरा फिलसफा है। जिस सौखे ढंग नाल असी पढ़ लेंगे इतनी सौखी खेड नहीं है। भगत कबीर ते कहने मैं देखे लोगन राम खिलौना है, माथे तिलक हथ माला दाना लोगन राम खिलौना जाना। खिडौने खेडन वास्ते ने, समय नु पास करन वास्ते ने, वक्त नू पास करने वास्ते। तो जिसकी दृष्टि च राम केवल खिडौना ही है उन्हें की राम नू समझना है। तो मुख्तसर जो है मैं इस तरह गुरबाणी एक गहरा गूढ़ सिद्धांत है, बहुत गहरी सच्चाई है, उच्चा दर्शन है। तो संक्षेप में मैं इस तरह परमात्मा की दुनिया के काल नहीं है, बेहोश मनुख की दुनिया दिख भी काल नहीं है, भगत की दुनिया दिख भी काल नहीं है। बेहोश हो गया समा खो गया, या सो गया तो समा खो गया, बहुत गहरी नींद दे चला जाए तो कोई वक्त रहेगा? क्योंकि बहुत गहरी नींद दे जो चला गया अकल तो थल्ले चला गया, और भगत जो अकल तो अगे चला गया। परम आनंद है। अकल तो अग्गे चले जाइए, वक्ती सुख है अगर अकल तो थल्ले चले जाइए। इस वास्ते मैं अर्ज करता हूं ना, सारे पशु सुखी ने, कोई भी दुखी नहीं है, मनुख दुखी है। और मैं ये भी अर्ज करा, अगर पशु कोई दुखी है तो वही दुखी होगा जिसमें मनुखा दे नाल रहना पैंदा है, वरना पशु दुखी नहीं है। पशु कभी पागल भी नहीं होंगे। हाँ, वह बेचारे जरूर पागल हो जाने जिन्हों पागल मनुखा नाल रहना पैंदा है, वो जने पागल होंगे, पशु कतई पागल नहीं होंगे। प्राकृतिक जिंदगी जीण वाले पशु कतई पागल नहीं होंगे। जंगलों में जीण वाले पशु पक्षी कभी पागल नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे। हाँ, दुखी मनुख नाल जिन्हों रहना पैंदा बेचारे दुखी होंगे। बंदा आप दुखी है, प्राकृतिक जीवन जी नहीं रहा, तो वह पशु नूं भी उस तरह का जीवन जीण से मजबूर करता, दुखी हो जाता है। पशुआं की दुनिया च दुख नहीं है, बच्चियां की दुनिया च दुख नहीं है, सुते हुए मनुख की दुनिया च दुख नहीं है, मूर्ख मनुख की दुनिया च इतना दुख नहीं है, बेहोश मनुख की दुनिया च दुख नहीं है। ये मैं अर्ज कर दें, सुखी है। जितना कोई होश देखे उतना ही दुख है। दुख नू अगर नापना हो तो इस ढंग नापांगे, जितना होशमंद मनुख है उतना ही दुखी है, जितना सियाणा है उतना ही दुखी है। तो दुख दे जीवना तो बड़ा औखा कठिन है। या दुख तो अगे लंघे, तो दुख तो अगे लंघन का मतलब है अकल तो अगे लंघे। कहो कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पार। जिहड़ी मेरी अकल थी ना वो हरी ने चुरा ली। मैं हैरान होना भारत के पुराने प्राचीन संतां बारे, उन्होंने परमात्मा ने एक नाम दिता है हर, तो इस दे में अर्थ पड़े ने चोर। परमात्मा की है चोर, हर हर लेंगे तो हर लेना की चुरा लेना, हरन कर लेना। चोर आखे दरअसल चोर की एक खूबी है रब दे। चोर जिस घर में प्रवेश करता है घर वाले नु बिल्कुल पता नहीं चलता। अगर घर वाले नु पता चल जाए कि चोर अनाड़ी है, कुछ सियाणा नहीं है, ये भी मैं कर दें। मैं तो हैरान हो जाना, इतनी भीड़ दे कि कई जोड़े चुप के ले जाते, पता नहीं किस तरह ले जाते, भांडे भी ले जाते। कल लंघ रही मैनू कह लगे जैनी जी अद्धे कप रह गए, अद्धे से ले जाते, पता नहीं किस तरह ले जाते हैं इन्नी भीड़ दे। तो कहने तो मुराद चोर जब किसी घर में प्रवेश करता है घर वाले नु पता नहीं लगन दे, घर का कीमती साजो समान चुक लेंदा चला जाता है। घर वाले जब सुचेत होंगे जाग दिन ते पता चलता है चोर आया ले गया सब कुछ। यकीन जानो जब भी किसी के अंदर परमात्मा प्रवेश करता है उस वक्त उसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। कारण परमात्मा आंदा ही उदों है जब मनुख अकल तो अगे लंघ, उसको खबर किस तरह हो, अकल ने के खबर करनी है। जिसको अल्लाह की खबर थी वो बेखबर मिला, जो अल्लाह की तरह जी रहा थी, रब की तरह जी रहा थी, कुछ खबर देने जोगा रहा ही नहीं, कुछ दस ही नहीं सकता, वो तो बेखबर हो गया। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे कहो क्या कहिए, कोई खबर ते दे कबीर, कन्न नहीं गूंगा की खबर दे की दसेगा। बिसम बिसम बिसमे ही भैया लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है, ज्यों चाक गूंगा मुस्कार। गूंगा की दस है, जिसको अल्लाह की खबर थी वो बेखबर मिला, वो तो कुछ खबर दस नहीं सके। कि खबर दसन वाले जड़े बंदे हैं उन्हों को अल्लाह कोई नहीं, कि जिन्हों को अल्लाह है बेचारे बेखबर, कुछ दस नहीं सकते। अक्सर ऐसा ही होता है, एक हकीकत है, एक बहुत वड्डी सच्चाई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, क्या हो कथे कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जा। मैं फिर कथन कर करके देख ले है, मेरी कथनी च नहीं आऊंगा, मेरे कहने वो आऊंगा ही नहीं, मैं नहीं कह सकता। तो खैर ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਘਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਚੌ ਜੁਗੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਦੁਖੀ ਬੇਚੈਨ ਬੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੇਚੈਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਾਕ ਕਾਲ ਜਾਲ ਜਮ ਜੋਹੋ ਨਾ ਸਾਕੇ ਸੱਚ ਕਾ ਪੰਥਾ ਥਾਟੇ, ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਲ ਹੁਣ ਵੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੋਆ ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਈ ਤੇਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਕਤ ਖੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਹੁਣੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੁਣੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਿਨਸਮ ਕੋ ਬਹੁਤ ਦਿਹਾੜੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਕਾਲ। ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਛੋੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋ, ਜੋ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ। ਉਹ ਭਵਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੇ। ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਭੂਤਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭੂਤਕਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਭੂਤਕਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ते संसार रब ने कदो बनाया थे तवार ना जोगी जाने रुत मार ना कोई जाकर ता सिर ठीको साजे आपे जाने असि उदो दे इतने पुराने भूतकाल ते बहुत लंबा है किवें नापांगे ते भविष्य भी बड़ा लंबा है आशा बहुत दूर लै जांदी है सानू तृष्णा बहुत दूर लै जांदी है सियाने हुण ते मनोचिंतक भी कहिंदे ने कि मनुख की जितनी तृष्णा है मनुख की जितनी आशा है उहदे ते हजारां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां इन्नी लंबी आशा इन्नी प्रबल तृष्णा इहदे ते कई जीवन जीवे जा सकदे ने तो आशा बहुत लंबे भविष्य विच लै जांदी है भविष्य नापिया नहीं जांदा किधरे खत्म नहीं आता और स्मृति भूतकाल दिख ले जाती है बड़ा लंबा है तो जब लंबा जीवन मनुख जीवना चाहता है तो फिर भूतकाल चाहिए भविष्य चाहिए तो मनुख बैठा होता है भूतकाल की स्मृति दे भविष्य की चिंता बस इस तरह ही जब कोई वर्तमान में आता है तो काल खो जाता है परमात्मा प्रगट हो जाता है तो सवाल यह है कि वर्तमान किन्ना का है कि आज दी रात नूं तुसी वर्तमान आखोगे नहीं दिन नूं वर्तमान आखोगे नहीं वर्तमान किन्ना का है चलो भूतकाल से बहुत लंबा है बहुत लंबा है फिर सवार ना जोगी जा भविष्य भी बहुत लंबा है बहुत लंबा है इस वास्ते क्योंकि इतनी ते समझ है साडे मिटण दे नाल कोई दुनिया मिटदी थोड़ी है इस वास्ते मनुख दुनिया की लंबी आशा लंबी तृष्णा चल रहा है और कई दफा ये आशा इसनू भुला भी देंदी है चलो दुनिया नहीं मिटदी बहुत कुछ है तेरे मिटण नाल सब कुछ नहीं मिटेगा लेकिन आशा ले जाती है बहुत

0: मन ए तेरे चरणा च रह सकता, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। मालिक ने कहा सी फौजा चाहिए ने जो कुछ चाहिए, कहते नहीं दाता तेरे तो बगैर दूजा चाहिए ही नहीं। कह रहे सतनाम
1: सतनाम,
0: तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवै तुम काबो, आप हाथ दे
1: मोहे बचाओ,
0: किसे होर दे हाथ दी लोड़ नहीं, सहायता दी लोड़ नहीं, कृपा करके मेरे शीश ते हाथ रखो। आखो सतनाम
1: सतनाम,
0: कहते बख्शा जी जाना पैना। आखो सतनाम, बख्शा जी भेजने।

आयो बाल बुद्ध सुख रे हरक सोग हान निरत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ जौ लो हों किस सोचो चितो तौ लो दुखन परे जौ कृपाल गुर पूरा पेटिया तो अनद सहजे जेती स्यान कर्म हों किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये जो लो मेरो मेरो करतो तो लो बिखेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तो लो दान परे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तो नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्याग्यो री त्याग्यो त्याग्यो मैं गुरु मिल त्याग्यो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो रहाओ मान अभिमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपो पे संत प्रम डार्यो पूरन सर्वाग्यो जो किस करते कारण कीनो मन गुरु न लाग्यो साध संगत पर साध संतन के सोयो मन जाग्यो जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख न लाग्यो गौड़ी माला मेला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर सबद समाया रहाओ लाथी पूख त्रिसन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर मस्तक गुर पूरे तरयो मन जीतो जग सारी त्रिपत अघाए रहे रिद अंतर डोलन ते अब चूके अकुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मुके अचरज एक सुनो रे पाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाए परदा ठाकुर जो पेटियो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंबो सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच पे बिगासा गुर निधान हृदय ले राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की शरणी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरणी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद विचारे मां पुरखन यूं कहया बिन हर भजन नाही निस्तारा सुख न किन्हू लया तीन पवन की लखनी जोरी बूझत नाही लहरे बिन हर भगत कहां स्थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बिलास करत मनमोहन पूरन होत न कामा जलतो जलतो कभू न बूझत सगल बिरसे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे नीता यह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की पूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको ए विद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किच इन्हें कमानो जप तप कछु न सादा दैदिस ले इहो मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन तन भूम का ठाकुर हों इसका इह मेरा परम मोह कछ पूजस नाही ए पैखर पे पैरा तब इहो कहां कमावन परया जब इहो कछु न होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किछ आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करणहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर दिन अवर क्रिया बिरते जब तब संजम कर्म कमाने इहे ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संजम में रहता तिनका आद न पाया आगे चरण और है पाई उहां कामना आया तीरस नाए अर करनी प्रमता
आगे ठौर न पावे ऊहा काम न आवे ए बिद ओ लोगन ही पति आवे। चतुर वेद मुख बचनी उचरे आगे महल न पाई है बूझे नाही एक सुदाखर ओ सगली चाक चखाई है। नानक कह तो यो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर सेवो अर नाम त्यावो त्यागो मनो गुमानी। गौड़ी माला पन्नवा माधो हर हर हर मुख कही है हम ते कछु न होवे स्वामी ज्यों राखो त्यों रही है रहाओ क्या किस करे के करने हारा क्या इस हाथ बिचारे जित तुम लावो तित ही लागा पूरन खत्म हमारे। करो कृपा सर्व के दाते एक रूप लिवलावो नानक की बेना।

जियो इहो जियो वताई बल बल जाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो तिस निव निव लागो पाई जियो पोथी पंडित बेद खोजंता जियो होए बैरागी तीर्थ नावंता जियो गीत नाद कीर्तन गावंता जियो हर निरपव नाम ते आई जियो ऐ कृपाल स्वामी मेरे जियो पतित पवित लग गुर के पैरे जियो परम पौ काट किए निर्वैरे जियो गुर मन की आस पुराई जियो जिन नाउ पाया सो तनवंता जियो जिन प्रभ ते आया सो सो बावंता जियो जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो जन नानक सह समाई जियो गौड़ी महला पंजवा माज आओ हमारे राम प्यारे जियो रैन दिनस साफ साफ चितारे जियो संत देव संदेशा पै चरणारे जियो तुद बिन कित बिन तरिय जियो संग तुम्हारे मैं

दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पह कही है जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन देखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप तरिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो। गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन वित प्यारे जियो, मन तन तेरा एहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले है मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाई जियो, प्रभ को सद बल जाई जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो, नाम निरंजन एक लिव लागी जियो, गुरपूरा पाया सब दुख मिटाया जियो, आठ पैर गुण गाया जियो, रतन पदार्थ हर नाम तुम्हारा जियो, तू सच्चा साव भगत मन जारा जियो, हर तन रास सच बाप।

जोर तुम्हारे सुख वसान सच शब्द निशान रहाओ। सबे गल्ला जातिया सुन कह चुप किया कद ही सुरत न लदिया माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल न सुनी कहा इकस दो चौ क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अद नाए रसीड़ा।

साथ गौड़ी महला पंजवा माज दुख पंजन तेरा नाम जी दुख पंजन तेरा नाम आज तह आराधी है पूरन सतगुरु ज्ञान रहाओ जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ ना आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत ना जानिया ना जा पे आराध ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप तत्ती वाव न लग गई सतगुर रखे आप गुर नारायण दय गुर गुर सच्चा सृजनहार गुर पुठे सब किछ पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ राम गोविंद जपेंदियां हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिसते सोई पाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारिए जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीवी है पव जल पई है पार मिर साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास नानक उबरे नाम जप दर सच्चे सावास गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदु तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया मिलिया निथावे थाओ रहाओ होर साध सब फिक्किया तन मन फिक्का होए विण परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का करना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंद सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जाचक दर तेरे।

खा दो, मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, हर शोभ ते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एहो खेल कथन है किन्हु गुरमुख जाना, गौड़ी महला नामा, साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने अचरज लख्यो न जाय, रहाओ काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूरत बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई, जो दीसे सो सगल बिनासे ज्यो बादर की छाई, जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहो राम सरनाई, गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एनिस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे, रहाओ पूत नीत माया ममता स्यो ए विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो इहो जग देख तास उठतावे, पुगत मुकत का कारण स्वामी मूर ताहीं बिसरावे, जन नानक को तन में को भजन राम को पावे, गौड़ी महला नावा। साधो इहो मन गहो न जाई, चंचल तृष्णा संग बसत है या ते थिर ना रहाई, रहाओ कठन क्रोध काट ही के पीतर जे सुध सब विसराई, रतन ज्ञान सब को हिर लीना तासो कछना बसाई, जोगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पै दयाला तो सब विद बने आई, गौड़ी महला नामा। साधो गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काए गवाओ, रहाओ पतित पुनीत दीन बंद हर शरण ताए तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो, तज अभिमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो, गौड़ी महला नामा। को माई पूलियो मन समझावे, बेर पुराण साध मग सुन कर निमक न हर गुण गावे, रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरथा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बन ता क्यों रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यों निहो न लावे, नानक मुक्त ताहे तुम मानो जे कट राम समावे, गौड़ी महला नावा। साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा, रहाओ लोभ मोह माया ममता कुन औ विकियन की सेवा, हरख सोग पर सहजे नाहिन सो मूरत है देवा, सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा, दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए विद को जो प्राणी, गौड़ी महला नावा। मन रे कहाँ पयो तै बौरा एनस औध कटे नहीं जाने, पयो लोग संग होरा

निमखना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औध सिरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे और सगल जग माया मोहया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डरे दीन दयाल सगल पै पंजन शरण पाहे तुम पर रे रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस दे बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गा।

जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बूझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त इक नाई, तही निरंजन रहा समाई, निज कर व्याप रहा निज ठाई, उत्तत करे के मुन प्रीत, तन मन सूचे

रसन रसाए जैवर हैवर कंचन सुतनारी बहु चिंता फिर चाले हारी जुए खेलन काची सारी संपो संची पै विकार हर शोक उबे दरबार सुख सहजे जप हृदय मुरार नजर करे ता मेल मिलाए गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए गुरुमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूर माया चितवास गुरुमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास मन चंचल तावत फुन पावे साचे सूचे मैल न पावे नानक गुरुमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वारे री मैला पैला हों में करत्या न सुखोए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बिगूते पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे ना।

सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार पर होए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए। तृष्णा अग्न शब्द बुझाए, दूजा परम सहज सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए। तन में साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निज ठाओ, प्रेम परायण प्रीतम राओ, नदर करे ता बूझे नाओ। माया मोह सर्व जंजाला, मन मुख कुचील कुछ ते बिकराला, सतगुरु सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुखनाला। गुरमुख बूझे एक लीलाए, निज कर वासे साज समाए, जम्मन मरना ठाक रहाए, पूरे गुर ते ए मत पाए। कथनी कथो ना आवे और, गुर पुछ देखिया ना ही दर होर, दुख सुख पाने तिसे रजाए, नानक नीच कहे लिवलाए। गौड़ी मैला पहला, दूजी माया जगत चितवास।

करण गगन नह देखो दोए, नारी पुरुष सब आई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुरु मोको एक बुझाया, एक निरंजन गुरुमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एक हुक्म वर्ते सब लोई, एक से सब ओपत होई, राह दोवें खसम एको जान, गुर के शब्द हुक्म पछाण, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सालाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त पेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत विचार है, पंच मार साच पुरधार है, रहाओ जिसके अंतर साच बसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, रव सस एको गृह उद्यान है, करनी कीरत कर्म समान है, एक शब्द एक पिछया मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत फस जागे, पैर अच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिवलाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हमें हाँ मारे करनी सार, जब तब संजम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौरी महला पहला, खिमा गही व्रत सील संतोखं, रोग ना व्यापे ना जम दोखं, मुक्त पाए प्रभ रूप ना रेखं, जोगी को कैसा डर होए, रूप बिरस गृह बार सोए, रहाओ निरपो जोगी निरंजन त्यावे, अंदिन जागे सच लिवलावे, सो जोगी मेरे मन पावे, सो जोगी मेरे मन पावे, काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे, जरा मरण गत गर्व निवारे, आप करे पितरी निस्तारे, सतगुर सेवे सो जोगी होए, पैरत रहे सो निर्प

सो होए नर नहीं केवल निरपव ना हो अनाथ से नाथ करे बल चाओ पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ अंतर बार एक हो जाने गुर के शब्द आप पछाने साचे शब्द दर निशाने शब्द मरे तिस निज कर वासा आवे ना जावे चूके आसा गुर के शब्द कमल पर गासा जो दी सह तो आस निराशा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिले उदासा गौरी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरने तूरी रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा जेवा सूती हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मंत्र तास्या अलक अपेवा जय जय देखो तैसे साचा बिन बूझे जगत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख बिरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु पे बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस को तो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे आत्म चीने सो तप विचारे साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हम ताके दास गौड़ी मेला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है रहाओ बल राजा माया अंकारी जगन करे बहु पार असारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंक ना पाए अपेवे आप पुलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाथ दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ परहारी प्रहलाद उधारे कृपा तारी पूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका की समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहो मद कीट में खासा हरणा फसले नखो विदासा दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमुन संगारे रकत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पथ खोई।

क्यों सुख पावे परम पुलानिया, एक तिल फूले बौर पछतानिया, कंस के चांडूर ना कोई, राम ना छीनिया अपनी पथ खोई, बिन जगदीश ना राखे कोई, बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए, गुरमत धर्म तीरज हर नाए, नानक नाम मिले गुण गाए, गौड़ी महला पहला, चोआ चंदन अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो, दिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, दिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, दिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अति प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, एनस फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो, ताज पुल है सिर छतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हो मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्यागे कवरे, पाई मिले सच साचे सचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिले मल तोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अगन जगत पर जा रे, सो उभरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, कृष्णा राज तत नहीं बीना, काम चित कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर कीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर तृप्त ना कभू होई, पर पर पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन थाटा, बिन रस राते मन बो नाटा, ज्यो चातक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्ताता, गौड़ी महला पहला, हट कर मरे ना देखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसार है सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख्त सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के

तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे, तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावे, वाहो वाहो तिसको जिसका इहो जियो, गुर सबजी मत अमृत पियो, नाम वडाई तुद पाने दियो, नाम बिना क्यों जीवा माए, अनदिन जपत रहो तेरी शरणाए, नानक नाम रते पत पाए, कौड़ी मैला पहला हों मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरुमुख भगत बिरले मन मानिया, हों करत नहीं सच पाई है, हों मैं जाए परम पद पाई है, रहाओ हों मैं कर राजे बहुतावे, हों मैं खपे जन्म मर आवे, हों मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है, अंतर साच सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे, सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के करतारी लावे, हों हों कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे, जेसी है तेसी क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही, हों मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे, गौड़ी मैला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले करे आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया, हम हर राखे गुर शब्द विचारिया, रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा, ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना, नामो पूले जम का दुख सहना, मैं कर नाम ज्यों राखो रहना, चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम, मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम सिकदार है, नेचल कोय न दिसे संसार है, अफ्रियो काल कूर सिर मार है, नेचल एक सच्चा सच सोई, जिनकर साजी तिन्हें सब गोई, ओ गुरुमुख जापे ता पत होई, काजी शेख पेख फकीरा, वडे कहावे हों मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख देनी, बिन शब्दे मूठे दिन रैनी, हिरदे साच वसे हर नाए, काल न जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौड़ी मैला पहला बोले साथ मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैसे काल न जो है, मनमुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल ने चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुरु देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतर गत कीनी, गत मित्र पाई आत्म कीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परम हंस सच ज्योत अपार, जह देखो तह एक अंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरु चरणी, मन के मन मानिया चूकी अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला राम नाम चितरा पैजा का, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपार तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, तित कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई,
सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुरु पाए, हों में मारे गुर शब्दे पाए, अर्ग उर्ग की संद क्यों जाने, गुरुमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदी।

जो गाय को गोईली राखे कर सारा एन पाले राख ले आत्म सुख पारा इस उतरा खो दीन दयाला तो शरणागत नजर निहाला रहाओ जै देखो तै रव रहे रख रखनहारा तू दाता पुगता तू है तू प्राण अधारा किर्त पया अद ऊर्दी बिन ज्ञान विचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अंधियारा जग बिन सत हम देखिया लोबे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज कर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द सिर को नहीं बूझे सुख होई क्या ले आया ले जाए क्या पासे जम जाला डोल बदा कस जेवरी आकाश पताला गुरमत नाम नामी सुरे सहजे पट पाइये अंतर सबर निदान है मिल आप गवाइये नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे नानक मेल न चूके लाहा सच पावे गौड़ी मेला पहला गुर प्रसादी बूझ ले तो हो नवेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमा वही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बारे क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंख ना सूझई चित बिद निर्भय है।

की सेवा करें, ठाकुर नहीं दीसै, पोखर नीर विरोली है, माखन नहीं दीसै। इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बूझिए सब जम समाया। रागौड़ी ग्वारे री महला तीजा, अष्टपदियां एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मन का सूतक दूजा भाओ, पर में पूले आवो जाओ, मन मत सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सासत सिमरत सोध देखो कोए, विण नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरस पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए। गौड़ी मैला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख शोभा साच द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा रहाओ। गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किछ कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे ठौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे

परम सत्कार योग गुरु की साजी निवाजी हुई गुरु साध संगत योगने फतेह प्रवान करना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की परम पवित्र गोद विच बैठ के

0: जिस ग्रह बहुत तिस ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे परमंता, दोहां व्यवस्था ते जो मुक्ता सोही सहेला वाली है। कहते ने मालिक ये तो हो गई, हुण ए आ कि रात नूं कोई गला नहीं घुट जाए। आखो सतनाम
1: सतनाम।
0: गरीब बंदे मैं देखदा बाहर ही लम्मे पै रहिंदे ने, उन्हां नूं पता भी तन दे कपड़े ने, पता नहीं ये केड़े केड़े लॉक ला के देखदा भी कोई अंदर ना आ जाए। आखो सतनाम
1: सतनाम।
0: बड़ा उख्याई है, इहनूं डर आ, डोलते ही रहिंदा, इहनूं पता किसी ने लुट के लै जाना। हुण हालात की हो गए, हालत की होई, हुण रिश्तेदारां तों भी लुकाउंदा रहा जो पुछना पैसे है नहीं। वो कहता रिश्तेदारी चले जानी है, जे दे दिते तां वी नहीं मिलने, जे ना दिते तां वी गए आए। आखो सतनाम
1: सतनाम।
0: हाल दा जे दे दिते, इहनूं पता आ कि दुखी आ, कि हुण मंगण बार बार आउंदे, ये रिश्तेदारी नहीं रहनी, दे दियो। आखो सतनाम
1: सतनाम।
0: हुण ओ जे वापस नहीं मोड़ रहे, तां इहनूं नींद नहीं आउंदी। देखो जी लै गए सी, कहिंदे सी महीने वास्ते ही आ, साल हो गया। कह दियो सतनाम
1: सतनाम।
0: मेरे मालिक कहिंदे इहदा हाल जिहड़ा ना इही आ। आखो सतनाम
1: सतनाम।
0: आ देख अज शरदा नाल पीर बुद्धू शाह आए ने, बेनती कीती दाता कोई ऐसा मार्ग दस दियो जिस नाल मेरा जीवन बन जाए। आखो सतनाम
1: सतनाम।
0: सतगुर कहिंदे जिस तों वस्तु लैनी होवे ना, ओहदा होना पैंदा, ओहदा बनना पैंदा। दसो दाता की हुक्म? कहिंदे तुसीं सुधारे चले जाओ। आखो सतनाम
1: सतनाम।
0: कहते पातशाह मेरा कोई सुधारे है ही नहीं। आखो सतनाम
1: सतनाम।
0: मेरा है ही कोई नहीं, मैं कितने जाना। इतिहास कहता सेवा की, रोज सेवा करनी, वचन मालिक दे सुनने, बाणी सुननी, लंगर दी सेवा करनी। साइंस ने बंदे तो अज सब कुछ खो लिया, रोटियां पकाने वाली मशीन आ गई, पखा फेरन की लोड़ ही नहीं रही, वो बिजली फेरी जाती है, पानी दी टूटियां लग गई। कदे पढ़दा सी पखा फेरी पानी तो हर जन के पीसन पीस कमावा, वो चक्कियां पीण लग पईयां। ये विकारी ते दलिद्री हो गया बेचारा। आखो सतनाम
1: सतनाम।
0: जिसके कोल धन की सेवा नहीं सी ना हुंदी, मालिक उस तो धन की सेवा लै लैंदे सी। आखो सतनाम
1: सतनाम।
0: रोज सेवा करते ने पीर जी, हौली हौली रंगिया गया मन। जदों ये रस विच आ जांदा ना, परम रस बन जांदा, फिर पता की मंग करदा है मन।

0: प्रेमी कुछ भी नहीं मंगता, बिन तुद होर जे मंगना, सिर दुखों के देहो नाम सुन तो किया उतरे। दाता मेरा कोई है ही नहीं, जावा किथे। सतगुर कहिंदे साडा हुक्म आ, तुसीं सडारे वापस चले जाओ। और एक गल का ख्याल रखना, कदे अरदास नहीं करनी कि असीं सडारे आईए, नहीं तो सख्त इम्तिहान देने पैणगे। आखो सतनाम,
1: सतनाम,
0: नहीं तो सख्त इम्तिहान देने पैणगे। हम सडारे चल गए ने, शरीर उत्थे रहिंदा पर सुरत गुरु चरणा विच रहिंदी आ। असीं साडा शरीर गुरद्वारे बैठा हुंदा ते सुरत दुकान विच हुंदी आ, सुरत नौकरी विच हुंदी आ, सुरत न्याणियां विच हुंदी आ। शरीर इत्थे बैठा, अफसोस आ, बैठा दुकान च होवे, सुरत गुरुद्वारे होवे। आखो सतनाम,
1: सतनाम।
0: करदा किरत होवे, सुरत गुरु चरणा विच होवे। गल ते सुरत दा सी, पातशाह ने कहा सुरत दा ही, इस सौदा ही सुरत ते शब्द आया। क्योंकि जिन्ना दुनियावी रस्ता आ वो असीं शरीर दे द्वारा तय करीदा, जिहड़ा निंकार दा रस्ता वो सुरत द्वारा जाना पएगा, सुरत शब्द दे मेल नाल जाना पएगा। सुरत खिलरी हुई है, बादशाह कहते सुरत संभाल, की करना पड़ेगा। एक काम पहले जिंदगी च तू फैसला कर ला,

खुदी प्रश्न है, दूसरे पास खुदा प्रश्न है। पास बंदगी वाले ने, एक पास बदियां करने वाले ने, एक पास ठाकर के सेवक ने, एक पास ठग ने। खेड असल इसका अपना ही बनाया हुआ, दोनों सिरियां का आप चौनी खेले विकसे अंतर जामी। सतगुरु जी कहते ने, मैं आप जी के सामने विचार सहज ही आ गया, दोनों में बनाने वाला भी एक ही है, दोनों ही रब वर्ता।

हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिख बिख खाही माया मोह परम पै पूले सुतदा रास्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई सुखहो टल गुरु सेवी है अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै शिवत समी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशा जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा

ओंकारयादुक सनियनाद खलखंड क्यालु गुरुवर्यकालु करकर प्रणाम जरणनाम अंशजगात अजिजनबात अंशजगात अनरंजबात अंटट पंडार अंटटपार अडीठ धर्म अतिठ कर्म अणबरणनंत दाता महंत हर बोल मना छंद तब प्रसाद करुणालया है हर कालया है खलखंड है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्ववारण है त्रित के धरण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्या है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मंड है खलखंड है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है धपा धप है कृता कृत अमृत अमृत है मृत अमृत है करुणा कृत है कृता कृत धरणी धृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत अमृत अमृत है अजपा कृत है मृत अमृत है निर्नायक है कलकायिक है विश्वंबर है करुणालय है नृप नायिक है सर्वपायिक है पव पंजन है अरगंजन है रूपतापन है जप जापन है अकलं कृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरदा हर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्मवास है जस के जास है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज सिंह दाम सिंह शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योति ज्योति नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्रनादिभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बांके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे दृभंगी दृकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय पया वय भुव जुवनाश काशुगंज पांच लख पाख अकाल दयाल लेख भेख नाम काम गाटाह नाथ ब्रह्मथ जो निमो नहीं न रागे न रंगे न रूपे न रेखे कर्मंग परमंग गंजे लेखे भुजंग प्रयात छंद नमासल प्रणामे समासल प्रणाशे गंजलो नामे समासल निवासे कामंग बबूते समासल स्वरूपे गो कर्मंग प्रणाशि सुधर्मंग बबूते सदा सचदानंद सदरंग प्रणासी ग्रीमलग निंदा समाज तुल निवासी अजय भूते गिजय भगनी मैं हरियां करियां करी मद रही मैं जदर जगर वर्ती जदर जगर भूते सुयंपव शुभंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगं विभूते चतर चक्र वरती चतर चक्र भुगते सुजाम्भव शुभंग सर्वदा सर्वजुगते दुकाल

लाहे सुनो सतबाणी जैत सुनी मन तन हरिया हुआ रसना समाणी सच लख बड़ाणी दाकीगत कही न जाई कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र वाह साचा सुन मैनो पठाई।

संग खलड़ी मेरा चीत मैं देवाना भया अतीत कर काष्ठा दर्शन की भूख मैं दर मांगो नितानीत सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तलंग महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

दया कृपा संतोष जब गंडी सदवत एह दिन जी का है ता पांडे कत ना है तुटे नाम लगे ना है जले न जाए तन सुमान स्नान का जो चले पाए चौकड़ मुलना बह चुके पाया सिखा किंच डाई

जेकर सुतक मनी सत्य सुतक होए वो है लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेत दानियन के जिया बाजना कोए पहला पानी जो है जितरिया सब कोए सुतक क्यों कर रखिए सुतक कवर सोए नानक।

प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर कौ रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत तन लावहे तिसको सिमरत परम गत पावहे जय प्रसाद बसह सुख मंदर तिसे अतिहाय सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पह सिमरह तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई ध्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हटावै तिसे त्याग कत अगर लुभावै जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहरता का जस गावी जय जय प्रसाद तु सब को मन मुखता को जस रसन बखान जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जपत दरगह मान पावै नानक पद सेती घर जावै जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही जय प्रसाद तिर ओला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रवता कै जय प्रसाद तुझको ना कहूच मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे जय प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जय प्रसाद आपूकं पहरे जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जय प्रसाद अश्वहस्त अश्वारी मन तिस प्रभ कौ कबहू न बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख धना राख प्रोए प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सद तिसे त्याय तिसे त्याय जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जय प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रह गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुनह कर्ण नाद जय प्रसाद पेख बिस्माद जय प्रसाद बोल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख सहज समाव है ऐसा प्रभ त्याग अवरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मन हो विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता को जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसह जान मन सदा हजूरे

आप जपाए जपै सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ, प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास, प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए।

नानकिन कै कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता होए। सुनमिता नानक बिनवंता, साध जना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साध कै संगमुख उज्जल होत, साध संग मल सगली पोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा वर्णै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन।

साध संग बस अगोचर रहे, साधु के संग अजर सह। साध के संग बस स्थान ऊंचे, साधु के संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सर धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निधान, नानक साधु के कुर्बान। साध के संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार। साधु के संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु के संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सबल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कुलोकत है, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध के संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृदवसै, नान कुदरा साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग ना मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग घट घट जीठा। साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत भई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुन है तेता बखियाने। साध की उपमा ते गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साध की शोभा साध बन आए, नानक साध प्रभु भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक बिन कोए। नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक, ज्यों सुदा को खोदै को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल ना लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच दे ऊंचा, मन अपने है सब से नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक दिन प्रभ आप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्ती। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा। ब्रह्म ज्ञानी का हो सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी के बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवाप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म

ज्ञानी का सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अधाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी

नानको अपरस सगल निस्तार अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श परत्रय रूप न पेखै नेत्र साधु की टहल संग संग हेत कर्ण न सुने काहू किंदा सब ते जान आपस को मंदा गुर प्रसाद दिखिया पर हरै मन की बासना मन ते टरै इंद्री जित पंच दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न विष्णु की माया ते होय भिन्न कर्म करत होवे निह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मन तनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ावर नाम जपावै नानक ओह वैष्णो परम गत पावै भगौती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिनसा सगला परम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगौती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अरपै बिशन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगौती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन पर बोध राम नाम आत्म सोद राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर के कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो न आवै वेद पुराण सिमृत बुझ है मूल सूखम मह जान अस्थूल चौ वरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वरना में जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोय कर कृपा अंतर उरतार पत प्रेत मुग्ध पात्र कौतार सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै ना पाइया धर्म नानक दिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नजरी आया दास दसन तन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दर गह परवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी परे सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै।

नानक रचना प्रवृति बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होय पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन पर में उदासी।

परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नहीं को नानक तिस बलहारण जल थल महियल सोए अतपरी करण करावन करना जोग जो तिस भावै सोई होग खिन महथा उथा पुनहारा अंत नहीं किस पारा वारा हुक्मे तार अधर रहावै हुक्मे उपजा हुक्म समावै हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखै अपनी वड्याई नानक सब मह रहया समाई प्रभ भावै मानुख गत पावै प्रभ भावै तां पात्र त्रावै प्रभ भावै बिन सास तिराखै प्रभ भावै तां हर गुण भाखै प्रभ भावै तां पत ते उधारै आप करै आपन विचारै दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जानी जो भावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर नावै कहो मनुख ते क्या होयावै जो तिस भावै सोई करावै इस कै हाथ होए तां सब किछले जो तिस भावै सोई करे अनजानत बिथिया मह रचै जे जानत आपन आप बचै परमे भूला दह दस्तावै निमख माही चार कुंट फिर आवै कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले थिन महनीच कीट कौ राज पार ब्रह्म ग्रीव निवाज जा का दृष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दह दस प्रगटावै जा को अपनी करै बख्शीस ता का लेखा न गणै जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बंत आप बनाई नानक जीवै देख बढ़ाई इसका बल नाही इस हाथ कर्म करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस भावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच में बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबहू नृत्य करै बहुपात कबहू सोय रहै दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो तरवाल कबहू होए बह बड राजा कबहू भेखारी नीच का साजा कबहू अपकीर्त में आवै कबहू भला भला कहावै ज्यों प्रवरा खै तिव ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै कबहू होए पंडित करे बखियान कबहू मौन धारी लावै ध्यान कबहू तट तीर्थ स्नान कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान कबहू कीट हस्त पतंग हो जिया अनक जोन भरमै भरमिया नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै जो तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोय कबहू साध संगत ए पावै उस स्थान ते बोहर न आवै अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मन तन नामृत एक रंग सदा बसह पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सर कुर्बान।

नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जन न जो बनवंत सो होवत विस्ताका जंत आप स्वाओ कर्म बंत कहावे जन्म मरे बहुत जोन प्रमावे धन भूम का जो कर गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे नानकी हां मुक्त आगे सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तृण समान कछ संग ना जावे बहु लश्कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतरता का होय विनाश सब ते आप जाने बलवंत फिन मह होय जाए भस्मंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जा का मिटा अभिमान सो जन नानक दर्ग है परवान कोट कर्म करे हम तारे शर्म पावे सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार न सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म निंद्रवै हर दर्ग है कौ कैसे गवै आप कौ जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जाका मन होए कौ नानक ताकी निर्मल सोए जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निहतल नाही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देख जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हां छूटे सहस खटे लख कौ उठतावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग दिखिया के करे न तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजे स्वप्न मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी किसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किस कीनो सु अपने रंग सब ते दूर सब हूँ कै संग बुझे देखे करे विवेक आप है एक आप है अनेक मरे न बिनसै आवे न जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेसै समझे आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्तार सब कछ उसका ओ करने हार उससे भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर एक सोए अपने चलित आप करने हार कौतुक करे रंग आपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी

अति सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवन बखाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्री।

संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक न पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोय संत कै दुखन तान प्रस्त होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी करै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीच आए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओए भी गत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अरदीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दोख में दोख नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी को दान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख के तरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अध बीच ते टूटे संत का दुखी कितै काज ना पहुँचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर के थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहीं आपन बीज आते ही खाहे संत के दुखी को अवन राखन हार नानक संत पावे तै ले उबार संत का दुखी यों बिल्लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक ही धन नहीं त्रापै संत का दुखी छुटै अकेला ज्यों बुआर तिल खेत माहें दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदम त्या कहत किरत निंदक का तुर ही पया नानक जो तिस भावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है संत के दुखी की पूजा न आशा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दोख न त्रिष्ट कोई जैसा पावे तैसा कोई होए पया किरत न मेट कोई नानक जाने सच्चा सोए सब घट तिसके ओह करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करहो दिन रात तिसह त्याग हो सास गिरात सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा कोथिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनो कृपा करे तिस अपन नाम दे बड़ भागी नाम।

आद प्रभ कै रंग रात जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जां कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे।

सास सास सुमार अपने जन का पर्दा ढाक है, अपने सेवक की सर पर रख है, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पत्र रख है।

पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मह पार ब्रह्म एक है आप नहीं कछ परम सहस सियाणप लया न जाइए नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाइए सफल दर्शन पेख पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेट तसंग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुनकर बचन करन आघाने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुरख हो जाका मंत्र अमृत दृष्ट देखा हो संत।

बोल न पहुँचत प्राणी। अग्न अगोचर सब निर्बानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाए। अनक भगत बंदन नित करहे, चरण कमल हृदय सिमरहे। सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमृत सो होय। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जा कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासे, नानक भरम मोह दुख तहते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, अनंद भया दुख न ठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंधेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। भौ चूका निर्भौ हे वसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका सातिन कृपा धारी, साध संग जप नाम मुरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस सरवन। निर्गुण आप सरगुण ही ओही, कला तहार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बनाए, अपनी कीमत आपे पाए।

पाखंड पार ब्रह्म कदे ना जपाई, पर निंदा करी अंतर मल लाई, बाहर मल धोवे मन की झूठ न जाई। सत्संग तस्यों बहादुर चाहे, अन दिन दीखे दुखिया दूजै पाए।

संग सिख उतरे नानक गुण गाओ। उन्होंने नाल सिख का भी उदार हो जाता। ये सतनाम भी चमत्कार है, इस करके सतनाम का कीर्तन करो। सतनाम नाल रात नूं कहिंदे आए संत प्रौण कीर्तन हुआ रहण सबाई। महाराज ने कहा जे सुपने विच भी मैनू कोई तेरे मिले हुए मिल जाए जां गुरु नानक देव जी दे दर्शन हो जाए जां कोई साधु पुरशां दे दर्शन हो जाए ते फिर की हुंदा है। भाई वीर सिंह जी ने कहा

0: आठ पहर सिमरो तिस रसना,
1: आठ पहर सिमरो तिस रसना,
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना,
1: आठ पहर सिमरो तिस रसना,
0: आठ पहर।

0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

और एक केवल कहण दी गल नहीं इतिहास गवाह है, जिन्हां ने जपिया ओ ना डिगे ना डोले। धन धन बाबा दीप सिंह जी, एक सौखा नहीं सी, एक हाथ च तीस एक हाथ च खंडा लैके लड़दे जा रहे ने। एक गुरमंत्र दा प्रताप सी, एक भगती सी, एक नाम दा प्रताप सी,

के कोई दो राय नहीं। परम गति की प्राप्ति जेकर हो सकती है तो केवल और केवल सिमरन दे नाल, कोई दूजा रस्ता नहीं। क्योंकि ना तो धर्मराज अगे किसी की पेश चलती है, ना जमा दे अगे किसी का वस चलता है, ना ही भवजल तो कोई होर पार लैके जा सकता है। किसी तरह का धनी उत्थे प्रवान नहीं, नाम दे धनी प्रवान नहीं। उही पार लंघते ने जड़े जपते ने, ऐसा गुरबाणी कहती है। नानक भवजल पार परे

0: जो गावे जो गावे जो गावे प्रभु के गीत, जो गावे प्रभु के गीत, जो गावे प्रभु के गीत, जो गावे प्रभु के गीत,
1: तेरे गीत बस बस बस बस बस।

0: ऐसी माँ तो खिंचतनी,
1: ऐसी माँ तो खिंचतनी,
2: ऐसी माँ तो खिंचतनी,
1: ऐसी माँ तो खिंचतनी।
0: बस बस बस

0: ऐसी माधो खींच तनी, ऐसी माधो खींच तनी,
1: ऐसी माधो खींच तनी,
0: ऐसी माधो खींच

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

0: केवोदी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो, तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सभा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नु पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3074 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3075।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio, broadcasting from Gurdwara Sahib, Western Singh Sabha, Williams Lake. Any comments and suggestions, please call 250-392-3874.

उजाला के चला आर तन आया उठा सिखी वाला जिसका तैन देख के मैं सदके खून डोल तेरा

ऐसे नीच कर्मियां भी दिखते हैं। इसलिए विचार नीचा भी है। सीधे लफ्जों में असि कई बार आख दें, गुरु नानक ने आख्या इत्थे अपने आप नू नीच ने, क्योंकि नीच लफ्जों की नीच लोगों की विचार इस पौड़ी विच है। नीच लोगों की इहो कारण है काफिया तिना पौड़ियों का मिलता है, पर बाकी पौड़ियों नाल नानक नीच कहे विचार नहीं, उसे कुदरत कमल कहा विचार है। उनके नाल संबंध नीच शब्द नहीं जोड़िया इत्थे, क्योंकि जिक्र नीच का, इसलिए आख दिता नानक नीच कहे विचार। इस विच नीचों की विचार वो गल एक वक्री है कि गुरु नानक जदों किसी की गल करता है अपने आप नू किसी होमे हंकार की दूरी तो रख के उनके विच आप शामिल होता है, आपे नू शामिल करता है। गुरु नानक आपे नू शामिल करता है। असीं कई बार उनकी कहानी कर लें, गुरु नानक पातशाह जी का एक शब्द है जिंदे नाल बड़ी वड्डी कहानी कर लेंगे।

रंग बहुते होने के बावजूद बेशक तो माया ही है, बेशक माया ही है। हम इसे भी ख्याल दे दिता आरंभ में जेड़ा लफज वरतिया गया जो उस धन की रुचि रखने वाले लोगों की गिनती जदों धन की रुचि रखने वाले धर्म तो दूर होंगे ने उदों उन्हां दी अवस्था उन्हां दी रुचि उन्हां दी जीवन कहानी की बन जाती है उनका जिक्र किया। मूर्ख शब्द जिहड़ा आरंभ किया मूर्ख की परिभाषा एक लफ्ज़ विच गुरु ने

0: पहला नाम है मूर्ख।
1: जो मनुख को धन की रुचि हो जाएगा, धन होना होर गल है, धन की रुचि होनी होर गल है। मैं गल कर रहा मनुख का धनी होना होर गल है। धन का अंदर इफेक्टिव हो जाना, धन के प्रभाव थले आ जाना, धन के रंग में रंगया जाना, एक वक्री गल है। गुरु ने मनुख को धन छुपाया नहीं, बल्कि धन की रुचि तो वक् दिता है। मैं एक बार स्थिति सिख दो लफ्जों के दरमियान दरिया के बिन्न में मुख लुत है, दो किनारियों के दरमियान। मैं स्थिति से दो लफ्ज की ने मालिक रहमत ते रज़ा, जे कुछ मिल जाता है अमीर हो जाता है, दौलत बंद हो जाता है, दौलत आ जाती है, धन आ जाता है, फिर आखता है जी तेरी रहमत, वो फिर धन इफेक्ट नहीं, धन हंकारी नहीं बनता, क्योंकि वो प्रभु को मिलिया हुआ समझता है ना। वो ये नहीं समझता इनके लिए मैं कुछ चोरी करा, इनके लिए मैं कुछ ठगी करा, मैं इनके लिए किसी का गल वढ़ा, वो उसका नहीं कमाया होंगे। तो कहता मेरे मालिक ने उनका मोह भी नहीं होंगे, प्रभाव भी डाक सिर से उस रंग का प्रभाव भी नहीं होंगे, यो कारण जो चला जाए काफ का तेरी रुला जे तू दिता सी तेरी मर्जी, जे सुख दे तो तुझे आराम, दुख भी तुझे दे आई, जे भुख दे तो इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई, हम पे देख ना रखिए। सिख भी निशानी इन्हें भी संपे होवे ना, सिर्फ उन्हें देख के हंकारी ना हो, संपे देख ना हरखिए, विपत देख ना रोए। पर मनुख की हालत की है, जब कछ पावे तब गर्व करता है, माटी को पुतला कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दोहरे फिर है, जब कछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। गुरु कहते हैं यह है प्रभाव, पर इस प्रभाव तो मार कर देना, माया के प्रभाव थले आए हुए मनुख को दो चीजा आ जाने, कमाई के वक्त मूर्ख की निशानी जी है ना, काचा धन संचय मूर्ख गवार, उत्थे नाल ए आख दिता भावे जिन्ना मर्जी पढ़िया लिखिया विद्वान होवे, जे ओ मूर्ख है तो उनकी निशानी की है, पढ़िया मूर्ख आखी है। इतने दो ही गलों का जिक्र पढ़िया मूर्ख आखी है, जिस लब लो

लोटे हाथ ने बग जिन्हां ने मालां गल विच पाईआं होईआं ते मांझ धो के चंगे चमका के गड़वे हाथ विच पड़े होए ने अपनी तां अपने सेवादार नूं फड़ा छड्डे ने मेरे पिछे पिछे गड़वा लै के तुरिआ गुरु कहिंदे ने मैं उन्हां नूं संत नहीं आखदा कूड़ी कूड़ी अक्खी नहीं कूड़िआ जिहड़ा भी असलियत नूं छुपा के संसार नूं लुटना चाहुंदा है धन कमाना चाहुंदा है देख लो इस किस्म के ठग भी अज सब तो अमीर हो सकता है जे वह किसानी करते होंगे जे वह दुकानदारी करते होंगे जे वह मुलाजमत करते होंगे तो ऐडी छेती एडे वे महल ना बना सकते जिने वे डेरे उन्होंने कुछ वरिया में बना लै क्यों बना लै बनाए साड़ी कमी है असं उन्होंने ठगा पछाड़ नहीं सकते ते गुरु ने पानी भी चढ़ दिता कहने लगे।

他们弟姑爹，你俩अपने झूठ ते पड़ते ना जेड़ा भरम पैदा करके किसी के सामने अपनी असलियत छुपा के मन होर ते मुख होर होवे ऐसा मनुख ठग गया ते इसे नु ही कूड़िया रखते दौलत लई संसार दे लोग किसे नाल जदों ठगी करदे ने गुरु उन्हां नु कूड़िया रखते।